मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

झननन झननन झनक झांझरी बजे बांसुरी तट जमुना तट नटवर नट खट रासर में गोपी मन भावन रास।

सौम्य तेजस्विनी, लेखक डॉक्टर गिरीश भाई आई ठाकर। आ सौम्य तेजस्विनी पुस्तक में सोमनाथ प्रभास पाटन ना इतिहास नी आध्यात्मिक वार्ताओ संग्रहायेली छे। अने हवे आपणे माणीशु प्रकरण 5, हरण अपहरण। कौन छे आ बे माथाळो अने द्वारकाना रक्षको कायर थईने જોઈ રહ્યા છે? क्या मरी गया यादवी? अरे क्या गई अजय सेना? द्वारकाना चौक में बलभद्र रामनो क्रोध पूर्ण ध्वनि पड़घाई रह्यो हतो। धरती ध्रुजी उठे छे, पशु पंखीओ पण स्तब्ध थई जाय छे। जोई शू रह्या छो कायरो? क्या छे मारी गदा, मारो अश्व सज्ज करो। क्षणना छठा भाग में ए दुष्टनु मस्तक धूल चाटतु हशे। क्या मरी गया बधा सैनिको? अने बलरामनो आ क्रोध त्या बधे ज स्वर स्वरूपे गूंजी उठे। एक सैनिक मांड हिम्मत एकठी करीने सामे आव्यो। देव, बधा सैनिको यतिनी पाछळ दौड्या छे, एने रोकवा एने पकड़वा, पण शू भायलाओ, एक व्यक्ति आटली सेनाथी नथी रोकाती। धिक्कार, अरे पण कृष्ण क्या छे? आवा समये ए हाजर नथी? अहीं छू मोटा भाई। कृष्णनी वाणीमां आ समये पण कुमाश छे। शू थयुं मोटा भाई, आटला अकळाया छो? थोड़ू तो जाणू छू, आप कहो तो वधु समझाए। एज क्रोध में बलराम बोली उठ्या, काना, आमा समझवानु कई नथी। ओह, कृष्ण बलराम जेवा अप्रितम योद्धाओनी बहन एनु अपहरण? धरती रसाताल थशे। कृष्ण उठाव तारू सुदर्शन दौड़ अने करीना के दुष्ट नो शिरत छेद। पर कृष्ण तो स्वस्थ उभा छे। उपरती होठ पर एक मरमाळु हास्य रचायु छे अने बलराम नो क्रोध वधारे छे। काना विचार शू करे छे? पछी तू पण कायर थई गयो छे के शू? आ योद्धाओनी जेम उठाव तारू सुदर्शन, नहीं तो हूँ मारा हळती आखी पृथ्वी ने उलटावी दऊ छू। कृष्ण कहे छे, अने बहन ने विधवा करू एम ज ने? बलराम कहे, कृष्ण, आ अवळवाणी नो समय नथी अने तारी चतुराई नो पण समय नथी। हूँ हमणां ज हणी नाखू छू ए अपहरता ने। कृष्ण कहे छे, फरी याद करावू? હવે એ આપણી બહેનનો પતિ છે। તમે સાંભળી રહ્યા છો રેડિયો પાલનપુર પર સૌમ્ય તેજસ્વીના અંશોને। હવેનો વૃતાંત માણીશું આપણે વિરામ બાદ। મસ્ત રહો, વ્યસ્ત રહો અને સાંભળતા રહો રેડિયો।

जीव धनुष अनुसंधान जेवी कठोर स्वयंवरनी परीक्षा, कठोर ने कठोर परीक्षा में दस मस्तकधारियों पर अयोग्य ठरावाई जाए तेवी हवे अहीं आ बहन ने पूछवा आवे कौन। बराबर एज गाड़ा में कौंते अर्जुन तीर्थधाम करतो करतो प्रभास क्षेत्र में आवी पहुंचे छे। अर्जुनस तीर्थयात्रायां पर्यटन वन्नीम प्रभु गतः प्रभासम शृणोत मातुल्येम आत्मन। क्या तो अनेक ना मोड़े सुभद्रना वखाण सांभळ्या। आम तो मामा ने दीकरी पण ए समय क्षत्रियों में एवा लग्नो समाज मान्य हता अने धर्म मान्य पण। जाने अजाने एनु चित्त सुभद्रा तरफ खेंचावा माँड्यु। सुभद्रा ने एक वार जोई लेवी तो जोईए ज, एने मळवू तो जोईए ज एवुं मन जाणीने ते पछी तो वात ज स्वीकारवी। कृष्ण ए वात ने जाणी गया ने एमना अंतःकरणे सोनेरी घंटडीओना अवाजे एमने कह्युं के अर्जुन आ बहन सुभद्रा माटे ज योग्य पति छे, एनो ज वंश भारत वर्ष ने आगळ वधारवा सक्षम बने। सुभद्रानी कूके एवी संतति पैदा थाय जे भविष्यमां हस्तिनापुरना शासन ने संभाळवा समर्थ होय, भारतखंडमां धर्मनुं साम्राज्य विस्तारवा सक्षम होय। कृष्णनुं पोतानुं अवतार कार्य पण ए ज हतुं ने। अने कृष्णनी कुशाग्र बुद्धि कामे लागी गई। कपट कला कोविद कृष्णनी योजनाओ आकार लेवा माँडी अने द्वारकानी गलियोमां एक तेजस्वी त्रिदंडी यति एटले के साधु भिक्षाम देही करतो फरवा लाग्यो। ललाट मां तेजनी रेखाओ ने आंख मां वीरतानी आग। अने एक दिवस एने राजमहल माथी आमंत्रण मळ्यु। बळदेवजी पण अर्जुन रूपे एने ओळखी शकेला नहीं। अने भिक्षा पीरसता सुभद्रानी आंखों मळीने आरंभ थयो स्नेहना पवित्र चरणानो। वात ने आगळ माणीशुं आ विराम बाद। त्यां सुधी मस्त रहो, व्यस्त रहो ने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार। बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जहां पेड़ और पानी साथ हों वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी ऐसा ही है, जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों वहाँ जीवन में भी खुशहाली आ जाती है।
3: बहुत बहुत सुंदर संदेश आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों में हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ सरगुजा से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिवा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी W थापा।
2: बोरखेड़ा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नैना जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नहाटा।
3: अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का। बड़ी सुंदर प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
2: नमस्कार। एक सप्ताह में उमंग कार्यक्रम हमें इतनी अधिक जानकारी से समृद्ध कर देता है कि कार्यक्रम की समीक्षा में आपसे किस अंक की चर्चा करें और किस अंक को छोड़ें ये दुविधा हो जाती है, क्योंकि उमंग का प्रत्येक अंक अपनी खासियत लिए होता है।
3: आपने आगे लिखा है, हम हर एक अंक को नियमित रूप से सुनते हैं। 27 अप्रैल सोमवार को भारत की प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल के प्रेरक व्यक्तित्व की नाट्य प्रस्तुति सुनी और जान सके कि उनके ससुर श्री KS शर्मा जी का कितना बड़ा योगदान उनको पायलट बनाने की मुहिम में रहा। आपने आगे लिखा है,
2: 28 अप्रैल को उमंग कार्यक्रम में भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा के अंतर्गत गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था पर सरल शब्दों में पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई। 30 अप्रैल को नालंदा विश्वविद्यालय और 1 मई को तक्षशिला विश्वविद्यालय पर दुर्लभ संग्रहणीय जानकारी मिली। उमंग की पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद और आभार।
3: तो कृष्ण कुमार गुप्ता जी, आपको भी हमारा आभार इस प्रोत्साहन से भरे संदेश के लिए। हम आपकी उत्साह वर्धक प्रतिक्रियाओं की सचमुच सराहना करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डुडी और प्रमोद कुमार डुडी।
3: आप सभी श्रोताओं को संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब प्रस्तुत है हमारी रोचक जानकारी से भरी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। आप सबका स्वागत है श्रृंखला में। श्रोताओं, पिछले कई हफ्तों से हम कर रहे हैं भूगोल यात्रा।
2: हमने रोचक चर्चा की समुद्रों की, वर्षा वनों की और मैंग्रोव वनों की। तो अजीत जी, आज हम अपनी भूगोल की यात्रा में उमंग कार्यक्रम के माध्यम से कहाँ चल रहे हैं?
3: विमलेश जी, आज ही नहीं, इस पूरे सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
2: शीत मरुस्थल, ये कैसी बात हुई अजीत जी? हमने तो अक्सर सुना है कि मरुस्थल गर्म होते हैं और वहाँ रेती रेत होती है।
3: जी विमलेश जी, दरअसल होता ये है कि जब भी हम मरुस्थल सोचते हैं ना, तो अक्सर हमें रेत के टीले और गर्मी याद आती है।
2: बिल्कुल।
3: लेकिन तथ्य कुछ और है।
2: जी।
3: दरअसल मरुस्थल की पहचान गर्मी और रेत से नहीं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि कहा जाए तो कम वर्षा से होती है।
2: जी, तो आज हम किस शीत मरुस्थल की बात करेंगे
3: बताइए।
2: मैंने पढ़ा था कि पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका।
3: जी वो तो है।
2: श्रोताओं, आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। ये दुनिया के सबसे अद्भुत स्थानों में से भी एक है। इसके बारे में जानना ऐसा है मानो किसी दूसरी दुनिया

0: योजना के बारे में जानना।
1: जी विमलेश जी, श्रोताओं, यहाँ सालाना 50 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसका क्षेत्रफल 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 1.42 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ लगातार हिमपात होता रहता है।
0: जी श्रोताओं, इसे पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। यहाँ का सबसे कम तापमान लगभग -90 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। जरा सोचिए, ऐसी ठंड के यहाँ सांस लेना भी एक चुनौती है। ऐसी ठंड है इस जगह पर कि यहाँ के वाहनों के और अन्य मशीनों के इंजनों को भी हमेशा चालू रखा जाता है, क्योंकि इंजन यदि बंद कर दिया गया तो ईंधन मात्र 3 सेकंड में ही जम जाएगा।
1: और श्रोताओं, साथ ही साथ इनकी बैटरीज भी काम करना बंद कर देंगी।
0: जी
1: आपको बता दें कि यहाँ के लिए वाहन विशेष रूप से बनाए जाते हैं।
0: यहाँ की दो और बेहद रोचक बातें। पहली ये कि यहाँ के कुछ इलाकों में साल भर अक्सर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी गति लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इतनी तेज कि इंसान भी खड़ा नहीं हो सकता।
1: तो ये तो हुई पहली रोचक बात। अब आइए करते हैं दूसरी रोचक बात, क्या है?
0: दूसरी रोचक बात ये है कि यहाँ कई ऐसी घाटियां हैं जहाँ बर्फ बिल्कुल नहीं पड़ती। ये ड्राई वैलीज कहलाती हैं। वैज्ञानिक इसे प्रकृति का अनोखा करिश्मा मानते हैं कि जहाँ पर्वत पर चारों ओर बर्फ पड़ रही है, उन्हीं पर्वतों की घाटियों में भला बर्फ क्यों नहीं पड़ती।
1: विमलेश जी, हमारा उमंग प्रसारण शैक्षिक है
0: जी,
1: तो जरा बच्चों की भी बात कर लें। एक प्रश्न है मेरा कि क्या अंटार्कटिका के शीत मरुस्थल में बच्चे स्कूल जाते हैं?
0: अजीत जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर है, यहाँ भी बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ कोई स्थायी जनसंख्या तो नहीं है, सिर्फ कुछ शोध केंद्र हैं जहाँ शोधकर्ता वैज्ञानिक और अनुसंधान केंद्र के कर्मचारियों और कुछ सैनिक अपने बच्चों के साथ रहते हैं। यहाँ के कुछ क्षेत्रों में विशेष स्कूल चलाए जाते हैं जिनमें बच्चे पढ़ते हैं।
1: विमलेश जी, आपने कहा कि यहाँ अनुसंधान केंद्र है
0: जी।
1: हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि वैज्ञानिक यहाँ किस प्रकार का अनुसंधान करते हैं।
0: अजीत जी, यहाँ अनुसंधान के मुख्य विषय हैं जलवायु, शीत मरुस्थल के जीव और अंतरिक्ष इत्यादि।
1: जी
0: श्रोताओं, ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि शीत मरुस्थलों में भारतीय वैज्ञानिकों के दल ने भी 9 जनवरी 1982 को कदम रखा। भारत के अंटार्कटिक अभियान को ऑपरेशन गंगोत्री भी कहते हैं। बाद में यहाँ भारत द्वारा दक्षिण गंगोत्री के नाम से शोध केंद्र की स्थापना हुई।
1: तो अब विमलेश जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, हमारे श्रोताओं की ओर से है ये। मेरा प्रश्न है कि अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव कौन कौन से हैं?
0: अजीत जी, यहाँ पाए जाने वाले जीवों में मुख्य हैं पेंगुइन, जो शानदार तैराक भी होते हैं, ध्रुवीय भालू, सील, व्हेल और कई समुद्री पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं, जो यहाँ के कठोर वातावरण में भी जीवन को बनाए रखते हैं।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच तो ये है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, जीवन अपना रास्ता बना ही लेता है।
0: जी,
1: यही तो जीवन की खूबसूरती है।
0: बिल्कुल।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी।
0: और अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
1: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए।
1: प्रश्न का उत्तर भेजने के लिए आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे ईमेल के पते पर भी हमें संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: आप CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप NCERT की ध्वनि पाठ्य पुस्तकों को सुनना चाहते हैं तो आप इन्हें दीक्षा और NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है लुई पाश्चर।
0: इस कार्यक्रम में महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उनकी उन खोजों के बारे में बताया गया है जिनके कारण खाद्य सुरक्षा और जीवाणुओं से होने वाले विभिन्न रोगों के प्रति चिकित्सा विज्ञान की अवधारणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए।
2: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
3: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग।
2: 27 दिसंबर सन 1892,

0: सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान की दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मॉन्सिनर द अवेडी उन्हें यह मेडल प्रदान करेंगे।

0: लोगों ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है। उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेम्बर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
1: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
3: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
1: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
4: देखो, मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते।
5: हाँ, ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
4: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
5: हाँ, मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
4: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
1: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक

0: महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए। लुई पास्टर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
1: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लोहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
2: ठहरो, लोहा गर्म हो रहा है।
3: ये लीजिए, बिल्कुल लाल हो गया।
0: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पास्टर घबरा गए।
1: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
0: 21 वर्ष की आयु में लुई पास्टर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में 4th स्थान प्राप्त किया।
1: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पास्टर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
0: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पास्टर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
1: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
0: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पास्टर को बुलाया और कहा,
4: लुई पास्टर
5: सर,
4: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
5: कहिए सर।
4: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहाँ बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
5: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
4: ठीक है।
1: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पास्टर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पास्टर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पास्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
0: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्स को नष्ट किया जाता है और अच्छी बात यह है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन है।
1: पास्टर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं

0: क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
1: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
0: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
1: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
0: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
1: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
0: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
1: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
0: तो फिर उन्होंने क्या किया?
1: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
2: अरे आजा आजा आजा हाँ, इंजेक्शन लगा दूं?
3: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
0: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
4: सर सर ये टेलीग्राम।
3: अच्छा लाओ दिखाओ।
5: अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
4: क्या हुआ सर?
5: देखो टीके वाली सभी भेड़े बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
4: कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो सर।
5: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़े मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
4: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
5: हाँ चार्ल्स।
0: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
1: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
6: सर सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ पैरों और जांग पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
5: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
6: डॉक्टर साहब कुछ तो करिए वरना मेरा बेटा।
5: आप
6: ओ गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
5: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ
6: मेरा
5: अच्छा,
6: बेटा।
5: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा।
0: और आखिरकार

0: उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
1: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
0: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बबच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
1: पास्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पास्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
0: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पास्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पास्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पास्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
1: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पास्चर के दिमाग में थे, वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पास्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
0: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
2: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
0: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पास्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पास्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रेडम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माय ग्रैंडफादर वाज द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट, मोस्ट अफेक्शनेट एंड सेंसिटिव इंडिविजुअल। ही वाज अ ह्यूमनिस्ट, ऑलवेज वर्किंग टुवर्ड्स द इंप्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन।
3: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लुई पाश्चर और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो मुझे यानी अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: आ मारो नानो भाई छे ने, छबरो मस्ती खोर छे। कॉलेज मा तो मार्कशीट मा फोटोशॉप करीने पप्पा ने छेतरी जतो। गई काले मैं लाइट बिल मा जीरो रकम जोई एटले मने थयुं के नक्की आमाय आणे फोटोशॉप ज कर्युं हशे। बाकी लाइट बिल जीरो आवे ए वात गळे उतरे एवी छे। पूछ्युं तो कहे, मोटा भाई बधी ऊपर वाळा नी मेहरबानी छे, एटले के छत पर लागेली सोलर पेनल नी। मैं कीधुं, वाह, आ स्कीम तो खरेखर जोरदार छे। हो भाई, पीएम सूर्य घर मफत वीजळी योजना जोड़ावा माटे रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: तमे सांभळी रह्या छो 90.4 FM रेडियो पालनपुर। हूँ प्रियराज, सौ बाळ मित्रों नु स्वागत करू छू बाळ सभा मां।
9: केम छो बधा?

बक्का पालनपुरी न्यू ओळख એટલે ट्यून रहे मस्त रहे सांभळतो रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

0: अरे संगीता, सोलर पैनल न खावी दे, सोलर पैनल न खावी दे। क्यार ना मारा बद्धा मित्रों मने कहता था, पर साचू कहू तो मैं भरोसा त्यारे ज करियो ज्यारे प्रधानमंत्री जी पोते कहू।
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: मैं मोदी जी नी बात मानी ने सोलर पैनल न खावी, हने खरेखर मारू लाइट बिल जीरो थई गयू। तमे पण आजेज न खावी लो तो पछी राश एनी जुओ छो। आजेज रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।

जनगणना ना प्रथम चरण मा घर यादी अने मकानो नी गणतरी एटले के तमारा मकान नी गणतरी थशे। चालो तमारी भागीदारी थी तेने सफल बनावीए अने विकसित भारत 2047 तरफ एक वधु डगलू भरीए।

जनगणना ना प्रथम चरण मा घर यादी अने मकानों नी गणतरी एटले के तमारा मकान नी गणतरी थशे। चालो तमारी भागीदारी थी तेने सफल बनावीए अने विकसित भारत 2047 तरफ एक वधु डगलू भरीए।

0: is Jonita Gandhi. Thank you so much for watching our cover of Saw Asman featuring Mandeep Gandhi, my brother, and Anton Apostolov. I really hope you guys enjoyed the cover. We really loved recording and shooting it during my trip home in Toronto. So if you guys did like it, make sure you subscribe to my channel. That's Jonita Music. And
1: Namaskar. आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा जो लिखी है कृष्ण चंद्र जी ने। लास्ट एपिसोड में हम आए थे कि गधे को नया मालिक मिल गया था और वो मालिक का नाम था रामू धोबी जो उसे खरीद कर ले गया यमुना पार कृष्ण नगर में। तो शुरू करते हैं अब आगे। रामू धोबी किसी जमाने में मोहल्ला सुई वालन में रहता था, लेकिन जब उसके बहुत से ग्राहक पाकिस्तान जा बसे और जो शेष रह गए थे वे इतने निर्धन हो गए कि स्वयं अपने हाथों कपड़े धोने लगी, तो रामू धोबी भी वहां से निकलकर यहां यमुना पार कृष्ण नगर में आ बसा। यहां मुझे बहुत बड़ा परिश्रम करना पड़ा। रामू सुबह उठते ही कपड़ों की गठरिया मेरी पीठ पर लाद कर चल देता और यमुना के किनारे पानी में खड़ा होकर छुआछू शुरू कर देता। दोपहर

वो उसकी पत्नी खाना लेकर आती थी और कुछ धुले हुए कपड़े मेरी पीठ पर लाद कर लोहा करने ले जाती थी। मैं दिन भर यमुना के किनारे घास चरता रहता या पुल पर से गुजरते लोगों को देखता रहता। दिन ढले रामू फिर मेरी पीठ पर कपड़े लाद कर और स्वयं भी सवार होकर वापस घर चला आता और मुझे एक खूंटे से बांध कर मेरे सामने घास डालकर थका हारा चाय

खूंटे से दूसरे खूंटे तक, घर से घाट तक और घाट से वापस घर तक। बीच में न कोई पुस्तक आती, न ही कोई समाचार पत्र। संसार में क्या हो रहा है, विज्ञान किसे कहते हैं, सिनेमा क्या होता है, सभ्यता तथा संस्कृति, नृत्य तथा सौंदर्य, इन सब बातों से मीरा तथा रामू का जीवन बिल्कुल खाली था। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा। कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए हमारे साथ। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

मैं तो खैर एक गधा था, लेकिन मैं देख रहा था कि रामू और उसके घर वाले और उसके घर के आसपास रहने वाले लगभग एक सा जीवन, बिल्कुल मेरे जैसा जीवन व्यतीत करते थे। कितने अच्छे अच्छे कपड़े उन लोगों के यहाँ धुलने को आते, सुंदर छींटे, सुकोमल फूलदार कैंपरे और बादलों की तरह उड़ते हुए दुपट्टे। लेकिन रामू की पत्नी या उसकी बेटी के लिए एक भी कपड़ा ऐसा नहीं था। शाम को जब यमुना से लौटती तो प्रतिदिन सड़क के किनारे एक नए बने हुए सिनेमा के बाहर दर्शकों की भीड़ देखते, लेकिन रामू केवल सिनेमा की सुंदर विज्ञापनों को देखकर और एक आह भरकर आगे बढ़ जाता। उसका जी तो चाहता था कि प्रतिदिन सिनेमा देखे और उसके साथ दूसरे धोबियों का भी यही जी चाहता था, लेकिन जब वे अपनी जेब में इतने पैसे देखते कि या तो टिकट आ जाए या आटा, तो विवश होकर आटा ले आते। कभी कभी कोई मनचला आटा छोड़कर सिनेमा का टिकट खरीद लेता तो उस दिन घर में बड़ा हंगामा हो जाता। एक बार रामू ने भी ऐसा किया। उस दिन न उस

केवल ताड़ी पी बल्कि सिनेमा का टिकट भी खरीद लिया था और मुझे अपने एक मित्र तांगे वाले के हवाले करके भीतर चला गया था। सिनेमा हॉल के बाहर 3-4 तांगे खड़े थे जिसके घोड़े हिनहिनाकर और जमीन पर सूम मारकर एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। एक घोड़ा जिसका रंग मुश्की था और माथा सफेद और जो किसी प्राइवेट तांगे का घोड़ा था और इसलिए जरा अभिमानी दिखाई देता था, दूसरे तांगे के घोड़े से कह रहा था, मेरा मालिक मार धाड़ की फिल्में बहुत पसंद करता है। ऐसी फिल्म देखकर जब बाहर निकलता है तो खूब जोरों से तांगा चलाने लगता है। मुझे याद है कि एक बार सिनेमा से वापस आते हुए उसने भरे बाजार में मुझे सरपट दौड़ाना शुरू कर दिया था, जैसा कि उसने फिल्म में देखा था। कई आदमी घायल हो गए थे और एक बच्चा तो अस्पताल में मर भी गया था। लेकिन मेरा मालिक बहुत अमीर है, किसी न किसी तरह उसने साबित कर दिया कि वह शराब के नशे में धुत था, इसलिए केवल जुर्माना देकर छूट गया। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा। कहीं जाइएगा नहीं, यहीं जुड़े रहिए हमारे साथ। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

वेलकम अगेन। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा जो लिखी है कृष्णचंद्र जी ने। दूसरा घोड़ा बोला, मेरे तांगे पर जो दो औरतें आई है वे केवल यह देखने आई है कि मधुबाला ने कौन से फैशन के कपड़े पहने हैं, बल्कि एक औरत ने तो अपने बटुए में से पेंसिल और कागज निकाल कर दूसरी औरत को दिखाया कि वह किसी तरह हाल के अंदर बैठे बैठे मधुबाला के नए पहनावे का नमूना उतारेगी। वहीं पे तीसरा घोड़ा बोला, मेरा मालिक बड़ा इज्जतदार है, वह यहाँ हफ्ते में एक दिन अपनी प्रेमिका को, जो एक गरीब कपड़ा रंगने वाली की बीबी है, सिनेमा दिखाने लाता है। वह अगर चाहे तो उसे नई दिल्ली के अच्छे से अच्छे सिनेमा में ले जा सकता है, मगर उसे अपनी इज्जत का बहुत ख्याल है। मैंने झिझक कर मगर जरा साहस करके उन घोड़ों की बातचीत में भाग लेते हुए पूछ ही लिया, क्यों जी, यह सिनेमा क्या होता है? मेरा प्रश्न सुनकर उन तीनों घोड़ों ने बड़ी घृणा से मेरी ओर देखा, जैसे कहना चाहते हो, गधा ही है ना आखिर। इसके दूसरे ही क्षण वे तीनों हिनहिना कर हंस पड़े और मेरे प्रश्न का उत्तर दिए भी नहीं फिर अपनी बातों में लीन हो गए। मुश्की घोड़े ने घंटे की आवाज सुनकर कहा, इंटरवल हो रहा है शायद। जब सिनेमा समाप्त हो गया तो रामू धोबी ताड़ी के नशे में बेसुध मेरी पीठ पर लदा हुआ उसी नई फिल्म के गीत गाता हुआ जो अभी अभी उसने देखी थी घर की ओर चला। इससे पहले मुझे घर का रास्ता बताया था, आज मुझे बताना पड़ा। कई बार तो रामू गिरते गिरते बचा, आखिर किसी न किसी प्रकार मैं उसे संभाल कर घर ले गया, जहां उसकी यह हालत देख कर उसकी पत्नी ने उसकी खूब मरम्मत की, क्योंकि रामू की फिजूल खर्ची के कारण आज घर में चूल्हा नहीं सुलगा था और बच्चे भूख से बिलक बिलक कर सो गए थे। पति पत्नी में खूब खूब लड़ाई हुई। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा जो लिखी है कृष्णचंद्र जी ने। कहीं जाइएगा नहीं, इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए आरजे अंजलि के साथ रेडियो पालमपुर।

0: पत्नी कह रही थी, तुमने ताड़ी क्यों पी? सिनेमा क्यों देखा? जानते नहीं थे यह सब कुछ करोगे तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा? और रामू हाथ हिला हिला कर सिर झुका झुका कर कह रहा था,
1: खूब पता था, खूब जानता था, मगर मजबूर था। दिमाग में हर रोज कपड़े इस तरह छुआ छू करते हैं कि मालूम होता है दिमाग इनके शोर से फट जाएगा। ऐसे वक्त में ताड़ी पीनों को जी चाहता है ताकि यह शोर सुनाई न दे। सिनेमा क्या हर रोज देखता हूँ? कसम ले लो आज 6 महीने के बाद गया हूँ, बिल्कुल मजबूर होकर। जी चाहता था इस गंदी गली की गंदी मोरियों की बू सूंघते सूंघते परेशान हो गया, इसलिए वहां चला गया। क्या बुरा किया? वहां एक सुंदर घर देखा, सुंदर कपड़े, सुंदर नाच, साफ सुथरे बच्चे, औरतें ऐसी जो हमारे मोहल्ले में तो नजर ही नहीं आती। रामू की पत्नी ने उसे जोर से एक थप जमाई। मुआ घर भर को भूखा रखकर तमाशा देखता है? रामू ने कहा, मैं भी तो भूखा रहा हूँ, सच कहता हूँ, पेट की भूख बुरी बला है, लेकिन कभी कभी कोई दूसरी भूख भी ऐसी जाग पड़ती है कि रहा नहीं जाता। क्या हुआ जो धोबी हूँ, आखिर हूँ इंसान ही, पेट की भूख के सिवा और भूख भी लगती है, ऐसी कि मन भीतर ही भीतर भट्टी की तरह सुलगने लगता है। उस रात मुझे घास नहीं मिली, मगर मैं स्वयं भूखा रहकर भी सोचने लगा कि रामू ठीक कहता है। रामू कोई मेरी तरह गधा तो है नहीं जिसे केवल कपड़े ढोने और 2 वक्त के चारे से ही काम हो। रामू आखिर एक इंसान है जिसे पेट की भूख से अतिरिक्त और भी कई प्रकार की भूखों से वास्ता पड़ता है। अच्छे घर की भूख, अच्छे कपड़े की भूख, सुंदर आकृति देखने की भूख, सुंदर क्षितिज देखने की भूख। कई बार यमुना के किनारे घास चरते चरते मैंने यमुना के पानी में सूरज के सोने को घुलते हुए देखा है और उसके असीम सौंदर्य से उन्मत्त भी हुआ हूँ। लेकिन मैंने यह भी देखा है कि ठीक उसी समय बेचारा रामू गर्दन झुकाए कमर तक पानी में डूबा हुआ उस क्षितिज के सौंदर्य से विमुख होकर कपड़ों को बराबर कूट रहा है और उसे बिल्कुल मालूम नहीं है कि उसके आसपास सौंदर्य का कितना बड़ा भंडार लूटा जा रहा है। मैं गधा होकर इस सौंदर्य से

प्रभावित हो सकता हूँ। लेकिन रामू, रामू एक मनुष्य होकर भी इससे आनंदित नहीं हो सकता। आश्चर्य है, इस जीवन में, समाज में आज भी लाखों करोड़ों मनुष्य के जीवन गधों से भी तुच्छ है। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा बाय कृष्ण चंद्र जी। कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए मेरे साथ, आरजे अंजलि के साथ। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

0: रात मुझे स्वयं भूखा रहकर इस प्रकार के बहुत से ख्याल आए, लेकिन इसके बाद बहुत दिनों तक वहां टिकने को न मिला। ऐसा नहीं कि मैंने जानबूझकर वहां से भाग जाने का प्रयत्न किया हो। हालांकि वहां मुझे बहुत कष्ट था। एक तो समाचार पत्र पढ़ने को नहीं मिलता था, कई दिनों से किसी पुस्तक की शक्ल तक नहीं देखी थी। यमुना पार आमतौर पर जिन लोगों से वास्ता पड़ता था वे स्वयं इतने निर्धन थे कि पुस्तक नहीं खरीद सकते थे। बहुत से लोग मूढ़ और अनपढ़ थे। यहाँ प्रायः गाली गलौज, झगड़ा आदि इत्यादि रहता था। धोबियों के मोहल्ले में जहाँ मैं रहता था प्रतिदिन किसी न किसी बात पर लड़ाई होती थी। क्रोध धोबी के गधे पर निकलता था या तो फिर अपने बीबी बच्चों पर। दोष किसका होता था? शायद उन परिस्थितियों का जिन्होंने अच्छे भले मनुष्य को पशु बना दिया था। अब आप परिस्थितियों को डंडे से तो नहीं पीट सकते, यह हिंसा होगी, तो चलिए घर के गधे को ही पीट दीजिए। कानून आपको इसकी आज्ञा देता है। रामू के यहां प्रत्यक्ष है। मुझे जैसे पढ़े लिखे को बहुत से कष्ट झेलने पड़े, फिर भी मैंने उसका साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि रामू एक दयानतदार धोबी था। वह अपने कपड़ों पर बड़ी मेहनत करता था। सुबह से शाम तक अपना घर चलाने के लिए हर संभव प्रयत्न करता था। ऐसे व्यक्ति का साथ छोड़ने को जी नहीं चाहता था। मगर करनी भगवान की यह हुई, जब रामू यमुना में कपड़े धो रहा था, एक मगरमच्छ ने उसकी टांग खींच ली। रामू ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की। दोपहर का समय था। पुल के ऊपर से सैकड़ों मुसाफिर गुजर रहे थे। एक रेलगाड़ी गुजर रही थी। पुलिस ने संतरे भी पुल के नाके पर खड़े थे। रामू ने बहुत तेरा शोर मचाया, मगर मगरमच्छ ने एक न सुनी। वह रामू को घसीट कर गहरे पानी में ले गया। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा बाय कृष्ण चंद्र। कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए हमारे साथ। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।
1: इतनी सी बात

रामू के ग्राहकों को रामू के मरने का अफसोस तो जरूर हुआ, लेकिन कपड़ों के खो जाने का उससे भी अधिक हुआ, क्योंकि रामू और मगरमच्छ की लड़ाई में बहुत से कपड़े नदी में बह गए। कई एक ग्राहकों ने तो रस्मी अफसोस के तुरंत बाद रामू की पत्नी से कपड़ों के लिए तकरार शुरू कर दी। रामू बहुत अच्छा धोबी था, मगर हमारी शफान की साड़ी कौन से बुरी थी, और वो नई साटन की सलवार जो अभी अभी गुलजार टेलर मास्टर ने सिलवाई थी, कहाँ है वो? जरा वह मैले कपड़े की गठरी तो खोलो। मुझे उन लोगों की यह हालत देखकर बहुत दुख हुआ। हम गधों में भी यदि कोई मर जाता है तो हम उसके बीवी बच्चों से ऐसा व्यवहार नहीं करते, लेकिन शायद इसका कारण यह हो कि मनुष्य मनुष्य है। कुछ दिनों में ही रामू की पत्नी और उसके तीन बच्चों की हालत बिगड़ गई। उनके घर में खाने को कुछ नहीं था, फांके पर फांके लग रहे थे। धोबी मोहल्ले के सरपंच ने, जो एक समय से रामू की नौजवान पत्नी पर आंख रखता था, थोड़ा सा आटा और दाल रामू के घर भिजवा दिया और शाम को स्वयं भी ताड़ी पीकर चला आया और रामू की पत्नी से कहने लगा कि वह उसके घर चली चले। रामू की पत्नी ने उसे खूब फटकारा, गालियां देकर घर से बाहर निकाल दी और सिर पकड़कर रोने लगी। मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, मालकिन घबराती क्यों हो, सब ठीक हो जाएगा। रामू की पत्नी ने जब मुझे बोलते हुए सुना तो पहले उसे विश्वास ना आया, पर जब मैंने वही बात दोबारा कही तो आश्चर्य से उसकी आंखें फटी ही फटी रह गई, क्योंकि नई दिल्ली से आने के बाद अब तक मैंने किसी मनुष्य से उसकी बोली में बात नहीं की थी और रामू के यहाँ तो इस प्रकार की बातचीत का प्रश्न ही पैदा ना हो सकता था। लेकिन जब अब रामू की पत्नी ने मुझे मनुष्य की तरह बात करते सुना तो बिल्कुल घबरा गई। आखिर बड़ी मुश्किल से मैंने किसी न किसी प्रकार से उसे समझाया कि इसमें कोई विशेष बात नहीं है, यह कोई चमत्कार नहीं है, विशेष परिस्थितियां थी जिसमें मैंने मनुष्य की बोली सीख ली। मैंने रामू की पत्नी से कहा, मालकिन बेशक मैं गधा हूं, लेकिन इतने दिनों तक तुम्हारे घर का नमक खाया है, अब तुम चिंता न करो, तुम घर में इन तीनों बच्चों को लेकर बैठो, मैं बाहर जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या हो सकता है। अब क्या हो सकता है,

0: पत्नी ने कहा, कोई हमारी मदद नहीं करेगा, हम गरीब आदमी है।
1: गरीब है तो क्या हुआ, मैंने किंचित गौरव से कहा। अब राज्य हमारा है, जीवन हमारा है, समाज हमारा है, अब हम स्वतंत्र है, जो चाहे कर सकते हैं। तुम चिंता न करो, अवश्य ही कुछ न कुछ हो जाएगा। मैं आज ही तुम्हारी सहायता के लिए म्युनिसिपल कमेटी में प्रार्थना पत्र लेकर जाता हूँ। कृष्णनगर की म्युनिसिपल कमेटी का मुहर्रिर अपने एक मित्र और हेड क्लर्क के साथ मेज पर रजिस्टर रखे और रजिस्टर पर तास के पत्ते फैलाए विचित्र प्रकार के मूड में बैठा था। मैं धीरे से उसके पीछे जा खड़ा हुआ और धीमे से बोला, हुजूर बड़ी मुसीबत है। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालनपुर।

हुजूर, बड़ी मुसीबत है। वे लोग ताश खेलने में इतने मग्न थे कि उन्होंने सब सुनी अनसुनी कर दी, शायद यह समझकर कि मैं उसका कोई मित्र हूँ जो उसके पीछे खड़ा खेल देखकर सहानुभूति प्रकट कर रहा था। मेरी ओर देखे बिना कहा, हाँ भाई देखो ना, अजीब मुसीबत है, कोई चाल समझ में ही नहीं आती। अगर ये पत्ता फेंकता हो तो रंग से कट जाएगा, और यह चलता हो तो इससे बड़ा पत्ता अभी तक नहीं निकला, और अगर यह चलता हो। मैंने बात काट कर कहा, रामू धोबी मर गया। मरने दो यार, मुहर्री ने क्रोध से चिल्ला कर कहा, यहाँ अपना हुक्म का बादशाह मरा जा रहा है, तुम धोबी को चीख रहे हो। फिर एकाएक वह मेरी ओर मुड़ा, जब अपने पीछे किसी मनुष्य के बजाय गधे को खड़ा पाया तो एकदम लाल पीला होकर चपरासी से बोला, अब क्या गधे भी हमारे दफ्तर में घुसने लगे, निकालो इस कमबख्त को बाहर। चपरासी ने डंडा मार कर मुझे वहां से निकाल दिया। वे लोग फिर ताश खेलने लगे। मैं फिर थोड़ी देर के बाद म्यूनिसिपल कमेटी के मुहर्रिर के पास जा खड़ा हुआ। धीरे से दोनों लंबे कान जोड़कर उसे नमस्ते की और बड़े दुख भरे स्वर में कहा, हुजूर वह रामू धोबी। मुहर्रिर ने मुड़कर मुझे देखा। वह कुछ ऐसा बदमाश आदमी था कि बोलते गधे से भी प्रभावित न हुआ। ऐसा मालूम होता था जैसे जीवन भर बोलते गधों से ही उसका पाला पड़ता रहा हो। उसने मेरी ओर देखकर बड़े रोबीले स्वर में कहा, जल्दी बोलो क्या काम है। निवेदन यह है माई बाप कि सेवक रामू धोबी का गधा है। रामू धोबी 3 दिन यमुना घाट पर कपड़े धोते धोते एक मगरमच्छ के हमले का शिकार हो गया। उसकी बीबी और बच्चे भूखे हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुहर्री ने चिल्ला कर कहा। मैंने कोई अनाथालय नहीं खोल रखा। मैंने कहा, हुजूर आप घाट पर धोबियों से टैक्स लेते हैं। पुल पर से जब कोई गधा या बैल या कोई जानवर सामान उठाए गुजरता है तो आप उससे चुंगी लेते हैं। आप इतने सारे महसूल और कस्टम वसूल करते हैं और एक गरीब धोबी के भूखे बीबी बच्चों के लिए कोई प्रबंध नहीं कर सकते। क्यों प्रबंध करे, धोबी को मगरमच्छ ने मारा है। धोबी को मगरमच्छ ने मारा है, हमने नहीं मारा। वाह यह भी खूब रही। और वह जो आप घाट पर टैक्स वसूल करते हैं वह किस लिए? घाट टैक्स आप वसूल करें और उसी घाट पर कोई धोबी किसी मगरमच्छ का शिकार हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम कहां जाकर हर्जाना वसूल करेंगे? क्योंकि अगर म्युनिसिपल कमेटी घाट का टैक्स लेती है तो मगरमच्छ से बचाव का प्रबंध भी उसी को करना पड़ेगा। मुहर्रिर बड़ा चालाक था, बोला, धोबियों को चाहिए कि दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर मोल ना ले, वरना उनका वही हाल होगा जो रामू धोबी का हुआ। मैंने कहा, आप बात को उड़ाइए नहीं, साफ साफ बताइए आप क्या कर सकते हैं इस मामले में। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा बाय कृष्णचंदर। कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के बाद यहीं मिलेंगे। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

0: वह ऋण ने देखा, मैं किसी तरह उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं, तो उसने जरा नर्म होकर कहा,
1: भाई जहां यह घटना हुई है वह इलाका हमारे इलाके में नहीं है। यमुना का घाट तो दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी के पास है, दिल्ली शहर के टाउन हॉल में जाओ। चलो भाई पत्ता।
0: वे लोग ताश खेलने में लीन हो गए और मैंने यमुना पार जाने की ठान ली। पुल पाल करते समय संतरी ने मुझे रोका, बोला,
2: ओ आवारा गर्द गधे, किधर जाता है?
0: टाउन हॉल, मैंने घट से उत्तर दिया।
2: तेरा मालिक कहाँ है?
0: संतरी ने मुझे घूर कर पूछा। मैंने कहा, मेरा मालिक कोई नहीं है, आज से मैं आजाद हूँ।
2: संतरी ने बोला, यह कैसे हो सकता है? आजादी का मतलब यह थोड़ी कि मिल्कियत भी खत्म हो गई। तेरा कोई ना कोई मालिक जरूर होगा जिसका तू हुकुम मानता है।
0: मैंने पूछा, अच्छा बता तेरा मालिक कौन है जिसका तू हुकुम मानता है?
2: हेड कांस्टेबल।
0: और हेड कांस्टेबल का मालिक कौन है?
2: इंस्पेक्टर,
0: संतरी ने बिगड़ कर कहा।
2: और कौन हो सकता है?
1: इंस्पेक्टर से ऊपर डीएसपी, डीएसपी से ऊपर सुप्रिटेंडेंट पुलिस, इस तरह यह सिलसिला वजीर तक जाता है।
0: और वजीर का मालिक कौन है?
1: वजीर को स्टेट बैंक ने तनख्वाह मिलती है, इसलिए स्टेट बैंक उससे बड़ा हुआ।
0: और स्टेट बैंक से बड़ा कौन है?
1: स्टेट बैंक में रुपया होता है ना,
0: संतरी ने क्रोध से कहा,
1: इतना भी नहीं समझते? स्टेट बैंक से बड़ा रुपया हुआ।
0: अच्छा तो रुपये से बड़ा कौन है?
1: रुपये से बड़ा कौन है?
0: संतरी ने मेरा प्रश्न सुनकर सिर खुजाया, कुछ क्षणों तक चुप रहा, फिर मेरी ओर देखकर बोला,
1: रुपये से बड़ा कौन है? यह मेरी समझ में आज तक नहीं आया, तुम बता सकते हो?
0: संतरी ने मुझसे कहा। मैंने कहा, मैं तो एक गधा हूं, इस कठिन प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकता हूं? हाँ, अगर तुम मुझे टाउन हॉल जाने दो, क्योंकि मैं रामू धोबी की विधवा पत्नी के संबंध में रुपये की सहायता के लिए वहां जा रहा हूं, वहां जाकर अगर मुझे पता चल गया कि रुपये से बड़ा कौन है तो तुम्हें वापस आकर जरूर बता दूंगा। संतरी ने बड़ी अधीरता से पूछा।
2: जरूर,
0: मैंने वायदा करते हुए कहा। मगर तुम इतने बेचैन क्यों नजर आते हो?
2: संतरी ने कहा, क्योंकि अगर मुझे

0: पता चल गया कि रुपये से बड़ा कौन है तो मैं के यहाँ नौकरी कर लूंगा।
1: आदमी होशियार मालूम होते हो, मैंने संतरे की प्रशंसा करते हुए कहा और लंबे लंबे डग भरता हुआ यमुना के इस पार आ रहा। घंटों भटकने के बाद आखिर टाउन हॉल मिल ही गया। टाउन हॉल के भीतर घुसते ही मैंने सोचा कि अब से किसी छोटे मोटे मुहर्रिर या क्लर्क से बातचीत करने में समय नष्ट नहीं करूंगा, सीधे चलकर कमेटी के चेयरमैन से मिल लेना चाहिए और अब के रौब डालने के लिए अंग्रेजी में बात करना ठीक रहेगा। यह सोचकर मैं सीधे इंक्वायरी रूम में घुस गया और क्लर्क से बड़ी मंजी हुई अंग्रेजी में बात करते हुए पूछा, चेयरमैन साहब का दफ्तर किधर है? इंक्वायरी क्लर्क एक गधे को अंग्रेजी बोलते देखकर भौंचक्का रह गया। तुरंत अपनी सीट पर से खड़ा हुआ और बड़े सभ्य स्वर से बोला, हुजूर हुजूर 15 नंबर का कमरा है, ऊपर लिफ्ट से चले जाइए। उसने एक चपरासी मेरे साथ कर दिया। चपरासी ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा तो सही मगर चुप रहा। चपरासी ने मुझे लिफ्ट मैन के हवाले किया। लिफ्ट मैन ने बड़ी शिष्टतापूर्वक लिफ्ट का दरवाजा खोला। मैंने लिफ्ट में प्रवेश करते हुए देखा, लिफ्ट के भीतर लिखा था 6 व्यक्तियों के लिए, लेकिन उस समय मैं अकेला ही उसमें सफर कर रहा था। लिफ्ट मैन ने बाकी आदमियों को बाहर ही रोक दिया था। जीवन में पहली बार मुझे अनुभव हुआ कि एक गधा बराबर है 6 आदमियों के। लिफ्ट मैन ने ऊपर जाकर लिफ्ट रोकी। मैं सीधा दुल्की चलता हुआ चेयरमैन के दफ्तर के बाहर पहुंच गया और बाहर बैठे चपरासी से बड़े रौबीले स्वर में बोला, साहब से कहो मिस्टर डंकी ऑफ बाराबंकी पधारे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा। अब इससे आगे की बात हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। आपको ये एपिसोड कैसा लग रहा है इसके बारे में हमें जरूर लिखिए। व्हाट्सएप कीजिए 9512996688 पर। हमारे साथ जुड़ सकते हैं मेल के द्वारा radiopalampur@gmail.com। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। दिस इज आरजे अंजलि। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालनपुर।

जनगणना ना प्रथम चरण मा घर यादी अने मकानों नी गणतरी एटले के तमारा मकान नी गणतरी थशे। चालो तमारी भागीदारी थी तेने सफल बनावीए अने विकसित भारत 2047 तरफ एक वधु डगलू भरीए।